0: Elimbu FM 89.6 MHz.
1: हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: 됐지?
1: बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है तू तो जादू है यार।

0: एलम्बु एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज।
1: अब रंग थेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो सफलतालाई लागि प्राय गेन तयारी तोला जयमसी तथा नमस्कार लासु फ्याफुला कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ तथा नला जीवन लक्षण गरेर श्रृंखलाला अङ्क 23 रङ स्वागत मुला नियोग तामाङ बेनन लुरी फरक तबरे सेम मुला बेनन पूर्णता देन सन्तुष्टि लुई बितबला बरी सेम लाबा मुला यङ बेनन ला मङ तमुला जुन यङ वास्तविक तरी परिणत तब च्याबरी सेम लाबा मुला थेरङ लिहिन्छ वास्तविक यङला मङ छो न लबका दे देन अलबका दे गुङ्गी तिगा भिन्नता मुला लालन रङमा अवस्थरी थे सफलता लागि रङ द तयार लब इच्छा शक्ति नन् महत्वपूर्ण भिन्नता हिन्बा तयारी सिर लुइरि रङला लक्ष्य हासिल लबका दिदा थे हासिल अलबका दे ज्ञान अलग लमुला सफलता यङ भरि आवश्यक तबा योजना अनुसार कडा परिश्रम देन विश्वास योग्यता ज्ञान बजदिबारी अहम परमेश्वर से रङ द सेम लबा तम गदे यङ भरि तयारी आवश्यक मुला थेन्दे जब रङ लुइरी चुनौती गर्दै देन आवश्यक गरेला सामना लसुबला चु रङला पूर्व तयारी हिन्बा जोसे प्राय थे ताम गरे रङला लागि सकारात्मक वा नकारात्मक जब वा अजब रूपी परिणत तब कि आता बिसी निर्धारण लला प्रसिद्ध प्रशिक्षक डब्ल्युसीले तिराम बिबमुबा भाग्य तिगा हिन्बा जहाँ तयारी से अवसर द गुप्तावा मुला थेसे रङला टोलिदा लगातार नही अमेरिकी फुटबलर च्याम्पियनसिप खेल डाबरी प्रेसिडेन्ट लोप्ची थेसे रङला सफलताला श्रेय रङला खेलाडीका देशी प्रतिस्पर्धा लागि रङला तयार लबरी लाभ अनुशासन एन कडा परिश्रम लबरी पिन्जी लानन मिगदे विश्वास नमुलकी परिस्थिति से लुइरी हाला सफलता मुला वा असफल तामुला विवाद ताम निर्धारण लामुला तसै चु सत्य हिन्बकी रङ सफल मुसिला कि आरी विवा ताम रङ सेनो निर्धारण लसुला संसार नाङला युल्क देरी चरम गरिबी देन लानन कठिनन परिस्थिति छार्म निग देशे लुइरी गेन सफल ता याङमा याकर्गी लिच्छ अर्को गभै मुबा थेनी गदेला दृढ संकल्प देन तयारी लब जोस पिन्बा थेनिका दिँदा सफलताला शिखरी दोनालजी लुका 14 अध्याय 28-30 चुदे एनी गदे नङरी खालाई मिसे धरा र शोभ सेम लसम खेसे धरा र सोसी जिम्ब दोना गतै खर्च निला बिसी नक्षन हिसाब लतोला थेरङ आलानी विषम खेसे धरा र लज्जग थान्सी धरा र सोसी जिन्ना लब्रे आखम्नी विषम चुम्राङमा चम्मन मिगदसी थेदा खिसी लजी चु मिसे सोबरिम छान मुबा तर सोसी जिन्ना लबरेचा आखम्नी बिला रङला भविष्यला लक्ष्य तिग हिन्बा पिसी सोच्याव लबा लागि आवश्यक दुई देन प्रयास लगानी लबा लानन महत्वपूर्ण मुला रङला भविष्य रे तिग याङ बढी महत्वपूर्ण मुला तिराम रङसे थे प्रश्नलाई उत्तर था याङ भन्देन रङसे विशेष योजना गर्दै सोधला थेन गदे पालना लदोला जोसे रङ द थे लक्ष्य गदे याङ भरी नेतृत्व लाला जुन रङला लागि महत्वपूर्ण मुला यदि याङ साचिन लुइरी लुइरी सफल याङ भरी सिमुल विषम याङ प्रत्यक्ष थेनन लदोला लानन मिगदेसी बिलाकी न साचिन जब गिटार रपरी दोबरी सिमुला थे मङ मि हिम्बा तसै थे माइदा वास्तविक परिणत लबरी आवश्यक त्याग गदे लबरी कते जन तयार तिगा रङ रङला मेहनत से कमाव लबर टाङ बचत लबरी तयार मुस्युला तिगा रङ गिटार रप अभ्यास लबरी रङला लानन व्यक्तिगत दुई समर्पित लबरी से मुस्युला थे माइदा वास्तविक रूपरी दाबी लबरी चु आवश्यक थला हितुपदेश 24 अध्याय 27 परमेश्वरलाई फिर्क्याउला गे जिन्न लौ थेन्दे राङ्ला खेतबारी तयार ल थेन्दे चुल्ली छेराङ्ला दिम सो मङ्गदे तब दोना पुरा आतामुला जब दोना रङ गे आला मुसुला रङसे तिगा लाबरी आवश्यक मुला विषम रङ देन हाजिबा माई गदे मुला जुन रङ लुइरी हाबा च्याबरी से मुला कि विषम बेनन भन्दा महत्वपूर्ण तम हिन्दा थेने थेलिक छ रङसे थे मङ्ग दे पुरा ताबरा लागिरी आवश्यक तब प्रयास लदोला दृढ संकल्प से निर्णय लला कि रङ वास्तवरी रङला मङ देन छोना लसुला कि आइन्दा तयारीला हजिबै विकल्प आरे कडा परिश्रम लसुगो जुन से रङदा सफल तरी दोनला मुला आमेन रङनरिना जीवन री परमेश्वर से प्रशस्त आशिष पिन्छु गई
2: प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङ्ला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ
1: कार्यक्रमलाई बारे रङनिला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353939
2: हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङनी छङमदानु जयमसी नमस्कार।
0: Time check. It's 7 PM. अहिले साँझको 7 बजेको छ।